0: निकल गया। जय बोलिए शिव भोले बाबा की जय। सो नाउ वी विल हैव वन भजन एंड वी विल गो अहेड। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी कीप डूइंग। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग। वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर। हरि ओम।
1: ओम बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर श्री

He can be the, there is some sin, but the soul is not that sinable. You always adorable. Oh, the Tulasi, please accept it. This is the good time. I know that then we will appreciate your contribution because you are also helping this universe. You are also helping this creation. You are also helping this purity. And we always honor and then whole world accept you. Whole world honor you if you accept these things. Oh, the Tulasi, I'm not supposed to request you. Your husband is died there because of me, because of Vishnu. But still, don't worry that if you do this sacrifice, this is the high time. It's in your hand. Please support to Vishnu. That's okay. The whole world will continuously love you forever if you accept these things. And Tulasi is finally, she was in dilemma, but she convinced. Well, Mahadev, if you say that, if it is my destiny, if there is no choice, that's all right. But I need to be close. I need to be worshipped by era to era, every era, every ages, every kalpas. And that's why Tulasi accepted. And from that time, Vishnu Bhagavan remained in stone. That is, the stone is Shaligram. Have you heard of Shaligram? Yes, Shaligram is a kind of black stone. And inside the stone, there is a fossil. And snake, that's an insect fossil. And that is proven. And when she gave up the physical body, and the Gandaki river appeared. Her physical body is Gandaki. That's why if you go to Nepal, the Gandaki river is there. And you can find in the Gandaki river, lot of Shaligram, the black holy stone. And if you break the stone, you can see inside, there is a chakra, there is a mark of the insect. So, and that's amazing, isn't it? This Puran has been written thousands and thousands of years before. And the Nepal is just discovered, Nepal, how many years? The history is maybe a couple of thousands years. And Gandaki in the naming also, couple of thousands years. But you can see there is such a practical things. I did myself. I went in Kali Gandaki after reading this book. And I found out many Shaligrams. When we break that Shaligram, inside there is a chakras, and still you can yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the Shaligram, you will have the many, many lives punya. So, aapke liye kya hai? Bahut punya ko pradayak hoga. Agar Kali Gandaki mein jaake, aap isnan karoge. So, isliye, this is a wonderful story and proved story, proven story. And not only that saying, not story, not that is only conservative or somebody says in book. You can go and experiment on your own and or you can find out here as well. So that's why in Nepal, the Kali Gandaki, there are thousands of pilgrimage goes. And at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath. And in the Muktinath, you can see there is still the fire, continuous fire. It's not man-made fire. It's a holy fire. You can see there. The fire is flaming all the time. It's like a volcano. But it's not volcano because of the chemical. The fire is coming there continuously. And it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river, you can see the Shaligram, whatever the Shaligram. And wherever around the world, it is supplying now. That is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body. That is after she loses her that integrity. She loses her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi. And when she get the blessings, Tulasi, and from that day, Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she's worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops. In Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one research center called National Center of Biological Science. That did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested. And Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already herbs, popular herbs. And later on, that Tulasi is acceptable. And when you
dye also, the tulasi is very important. And in everyone's house, there is tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namastu lasi kalyani namo vishnu priye suve namo moksha prade devi navasampada pradayike namastu lasi devi namo vishnu priye suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the tulasi from that time. Continuously she is serving this universe. Many she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some tulasi seed with you, if you haven't already done this. And tulasi is the wonderful. It need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, tulasi. That's why tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And tulasi is offering to saligram. And saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is, what is the saligram? So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the tulasi, it is saying that it's a Vishnu. That's why many people, they keep at least five saligrams. The five saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This is Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five saligrams. So everyone can keep in saligram and tulasi. It has got medicinal benefits, herbs. And also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first? Then they supply. First is oxygen mask. So nature it give you oxygen masks in your home. When you plant tulasi in front of your a door, if in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That tulasi is oxygen, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial tulasi. If you put in tea, there is tulsi tea as well. If you wear tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of tulasi, that removes the bacteria and helps you. This tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and tulasi's mahima. And जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय विष्णु भगवान की जय. जब शंखचूड़ को जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए. जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में अपति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रत धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी. जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा.
जय बोलिए भगवान नारायण की जय। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई। जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है। तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी, इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है। अभी सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रशासन में आश्वासन तो यही है। और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ, तो पानी की कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pira. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finished many chapters today, and so which is important also, we will not have time some other time to read in detail. That is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
1: भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की
0: जय,
1: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय,
1: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर नंद

धर्म का नुकसान करने वाला है। तो इसलिए संशय आत्मा विनश्यति ही, तो किसने बोला है, तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्मा द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजंट इट। सो हनुमान इज ए भक्त ऑफ राम, वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती। बट इन सिमिलरली अर्जुन ऑल्सो द वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड भक्त ऑल्सो द कृष्ण। सो वाई वी कैन नॉट सेलिब्रेट अर्जुन जयंती, बिकॉज हनुमान इज अ डिवोटेड पर्सन, ही नेवर डाउट, ही नेवर डाउट। सो ही ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड ऑनर, देर वॉज नो डाउट फॉर हिम गॉड एग्जिस्ट और नॉट, देर इज ऑलवेज ही बिलीव एंड ट्रस्ट। So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee, but he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha ishyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki सर्व धर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वित्त होकर मानवीय धर्म ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा। इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज, इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर। इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी। That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, many stories is comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, वस्त्री भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। दैट मीन्स यावत जीवेत सुखम जीवेत, एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली, एंजॉय, ड्रिंक, डांस, एंड नो मैटर यू हैव डेट और नॉट, देन एफर्ट घी, घी मीन्स लाइक नेक्टर, एंजॉय योर लाइफ। बट दैट चार्वक थ्योरी इज दैट सेट, बट इन स्पिरिचुअलिटी इज लाइक देर इज अ ग्रेट नेक्टर, इफ यू हैव द एडिक्शन ऑफ डिवाइन यू डोंट नीड टू एंजॉय फॉर वाइन। सो इन you can enjoy with divine, the divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite, husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the trigon of proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli, aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein पहले से अभी तक क्या हुआ कि पार्वती जी का डिवोशन तो हमने सुन लिया था, ऐसे करके जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया,

पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया, इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है। आप कहीं भी रहो जैसा भी रहो कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था। तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा। जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री देव पुरुष महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय।

श्री श्री देव पुरी सब महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

स्थिर रहे मेहरू जैसा, देयर वृत्ति इज सदा अटल, देयर वृत्ति इज डजंट चेंज, सदा अटल अनमूवेबल अचल, स्थिर है मेहरू जैसा, एंड हाउ दे आर अनमूवेबल, दे डोंट मूव देयर थॉट्स, दे डोंट मूव देयर फीलिंग्स, दे डोंट, बिकॉज एवरीथिंग इज इनपरफेक्ट, सो दे आर अनमूवेबल लाइक वास वाट मेहरू जैसा. मेहरू मीन्स माउंटेन. कैन यू मूव द माउंटेन? नो. बट वेन देर इज सम टू स्ट्रांग हीट अर्थक्वेक, देन दैट एंगर दैट कैन इवन मूव द माउंटेन. But that it doesn't come, before it comes, it goes somewhere else. Andar bahir hai tyag, tyagi puran, gain dasa paisa, dhara paisa. अंदर बाहर त्यागी ऐसा पूरन, ही इज डिटेस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड. भाव भंजन भगवान सदा ही, गैन दारा पैसा, ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द माया, द प्रॉपर्टी और वट एवर अवर बर्डली थिंग्स. भव भंजन भगवान सदा ही, भव भंजन, ही हैव नो फियर, ही इज वन लाइक स्काई, भंजन ऑल द टाइम्स, भजन भजन, भगवान सदा ही, ही इज दैट इज अ गॉड फॉर एवर. ताके करम कटे कर्म कलेशा, कटे मीन्स कट, ही कट्स द ऑल कर्म एंड कलेशा. कर्म मीन्स अवर कर्मास एंड कलेशा मीन्स अवर फाइटिंग्स. ऑल ही विल गिव अस द रिजल्ट एंड वी विल बी इन द पीस. हंस उबारण जग में आया, शुभ अवतार धरेशा. टू लिबरेट द स्वान मीन्स दिस आत्मा, भक्तास, यू आर ऑल स्वान, पीसफुली बैठे हो, वेरी नाइस पीसफुल यू आर सिटिंग, लाइक ए वेरी पीसफुल स्वान, यू नो मी टू, या एंड महाप्रभु जी विल डेफिनेटली लिबरेट. हंस उबारण जग में आया, ही केम इन दिस वर्ल्ड टू लिबरेट ऑल दिस स्वान्स, दिस भक्तास, प्यार भक्तास. भगवान कृष्ण सेड, टाइम टू टाइम आई इनकार्नेट विथ माय योग माया एंड आई सेव लिबरेट माय भक्तास एंड किल द राक्षसास, द नेगेटिव एनर्जी. So Asuri Shakti and Devik Shakti. And that's why all avataras in their hand, good things and weapon though, both. I remember many times Guruji said, in my hand, in one hand I have ladu, big ladu. In other hand I have stick. What do you want? I said, ladu, then sit down and learn. That's it. Yes? Don't do stupid things? Yes? So, Hans Ubaran Jagme Aya Shub Avatar Dharita. And therefore, his incarnation is Subha, the best, the good. Sri Deep Kahe Guru Dev Namami.
Mahaprabhuji said, Sridip, Gurudev,

महाप्रभु जी से गुरुदेव नमामि माय एडोरेशन प्रणाम टू गुरुदेव बारंबार आदेश एंड अगेन माय एडोरेशन टू दी ओ गुरुदेव दीप नारायण भगवान की देव पुरुष महादेव की माधव कृष्ण भगवान की।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

drink, etc., etc., so that human's brain is occupied with the good qualities, with the good things. Therefore, it is said that God has given to this soul, Jivatma, to the humans. But only when this Jivatma enters into the human body, it means not that can be the holy already. That we don't know what you are thinking, what I am thinking. But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द महाराज कि गुरुजी हमें मंत्र दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे को शिष्य बनाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा कि हाँ कहिए गुरुदेव क्या परीक्षा कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया ले गुरु जी कि किसी ने देखा कि नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं कि उसकी भी पट्टी बांध दे गए वापस जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख की पट्टी बांध दी कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी लेकिन भगवान तो देख रहा है भगवान की आंख मैं कैसे बांधू तब कहा तू पक्का चेला है बेटा तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे और उसको कहा ला इधर कबूतर को उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है और वो ये है आप खुद जानते हो तो भगवान जानता है और आप जानते हो ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है तो उसी प्रकार जब मनुष्य का When the human soul enters into the human body, God gives us the freedom.

0: गोवर्धन जी महाराज की जय।
1: एवरीवन क्लोज योर आईज। नॉट यू लाना, नॉट यू, यू प्ले।
2: Takže každý si zavře oči.
1: Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.

0: ॐ श्री अलख निरंजनाय नमः। ॐ श्री अलख निरंजनाय नमः। रिपीट आफ्टर मी। ॐ श्री अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ
1: अलख निरंजनाय नमः।
0: अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय नमः। ॐ अलख निरंजनाय

श्री सत गुरुदेव की जय, स्वामी अवतरपुरी जी महाराज की जय, श्री लालानंद जी महाराज की जय।

श्रुति शरण धर ध्यान जय जय देव दयाल शिवा कर्ण सुमंगलमूर श्रीदीप ज्ञान वैराग्य मता सदा रहो चरण गुरुदेव जी श्रीदेव।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शिव निमात्मा।

विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की जय। स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। डोब्रो नोच लाको नोच गुटे नाख्त बोने नोते शुभरात्रि हरिओम एंड सी यू एट 4:30।

0: भगवान की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगी राज की जय। श्री अलक पुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा की जय हो। माता की जय।
1: Om Sri Alak Purisha Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavane.
0: Ki jai.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jai.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jai.

0: भगवान की जय। देवाधिदेव श्री श्रीदेव पुरी जी महादेवा की जय। राधे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म साम्राज्य श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सत गुरु देवा की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु देवा की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री देवेश्वर महादेवा की जय। श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु श्री स्वामी महेश्वर।

होली श्री दीप नरयाम भगवान की जय। श्री श्री देव पुरी जी महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर योगिराज परमहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय।

0: time, the Mahadev told whale, until he has got the power of wife, he will not die. So that's why for this one, the trick, we need a trick. And Vishnu wanted to make one trick. And what was the trick? So trick is to make something powerless. The powerless means that he can stash the Krishna Kavas. Also, there need to be some separations between husband and wife. There need to be brings. That's why you need to be very careful. Sometimes from the outside energy comes to make separate husband and wife's love. So always if you are cautious, you will not lose that power. And Vishnu make a trick. First he wanted to snatch the kabats, the Krishna kabats. And he disguised himself, the different form of a poor Brahman. And he became a very poor Brahman and he went to the Shankarchud's house. And Shankarchud, look at this, I am so weak, I am so hungry, I would like to ask something, can you please give me something, I am begging you. And Shankarchud is Danava and also spiritual. If one Brahmin, poor Brahmin asks, then can you give me something? So without asking also, that our tradition is Brahmin. Brahmin means who knows the Brahma, who knows the Veda, who is the intellectual person. We love to donate because that dhan, that asset will spread the knowledge towards the world. So that's why they donate. Brahman, priest, and then intellectual person. And he arrives on his gate. So he's very adorable and kind and generous demon. And he said, well, I can give you. That's not a problem. That's okay. So, and what would you like to ask? And the poor Brahmin trickfully asks, well, I don't need anything except your Krishna Kavach, he said. Oh, Krishna Kavach? What you need? Who are you? I thought you are asking some rice or some money or some land. You are asking Krishna Kavach. That is my favorite things. He said, well, you already promised that you want to give. If you don't want to give, that's all right. I'm going. You know that. Once you promise and you don't give, what will be the result? And he always wanted to curse or something, obviously. And Shankarchud is scared. Well, all right. I'm going to give you Krishna Kavach. And he hand over the Krishna Kavach to the Brahman. So his first power was Krishna Kavach. That was meditative power from the Brahma. Then the Vishnu snatches it. So that's why when you don't take that ghee from the straight finger, what you do? Squeeze. So in the same way, the Vishnu also did the trick and snatched the Krishna Kavach. Shankarchud bahut balshali tha. और उसके पति बता सो पत्नी के धर्म से वो बलशाली हो रहा था लेकिन क्या है उसके साथ साथ कृष्ण कवच था अब विष्णु ने क्या किया कि कृष्ण कवच छीनने के लिए क्या किया कि उसने एक गरीब ब्राह्मण के भेष धारा गरीब ब्राह्मण के भेष धरने से उसने शंखचूड के साथ में जाकर क्या है कि भिक्षा मांगा ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही बोल के मांगा जब भिक्षा मांगा तो क्या है कि शंखचूड़ के साथ में तो असंख्य धन था दौलत था सारे था एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए देने के लिए क्या नहीं था उसने अच्छा ठीक है मैं देता हूँ बोला तो ब्राह्मण ने बोला चलो संकल्प तो कर लो पहले तो जब जो कोई भी संकल्प करते हैं तो देना ही पड़ता है नहीं तो उसको श्राप लगता है और उसको क्या है श्राप से और पाप लग जाता है तो ब्राह्मण के देने के लिए उसने संकल्प कर लिया संकल्प करने के बाद में उसने मांगा कि क्या चाहिए वृद्ध ब्राह्मण तो उसने बोला कि मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके पास में जो कृष्ण कवच है वही चाहिए तो वो क्या है कि आश्चर्यचकित हो गया अरे ऐसा वृद्ध ब्राह्मण मैंने सोच के संकल्प किया था ये तो झूठे है ये तो जाली है तो वही के भगवान के ये माया के खेल है चलो संकल्प तो कर लिया है अब बोलने के बाद में देना ही पड़ेगा तो उसने क्या है कि दे दिया तो कृष्ण कवच तो वो दानव का आधा बल कृष्ण कवच में था वो निकल गया जय बोलिए श्री भोले बाबा की जय सो नाउ वी विल हैव वन भजन्स एंड वी विल गो अहेड सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वी कीप डूइंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर हरि ओम
1: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय श्री श्रीमाधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर हंस

So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. O Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. तो फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि हे विष्णु छलकारी तू जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर सालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा साफ था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष, मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility.
and that is the because the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding? That's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड पीपल वुड्स तुलसी वुड्स कुश ग्रास तुलसी वुड सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल कुश तुलसी इट्स एज लाइक It will be purified your body and spiritually you will go in heaven. Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai ki thodi si bhi people ke ped lakdi aur tulasi ke lakdi saath mein rakh lo aur chita mein koi bhi kisi ka bhi chita पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकाश रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है तो वो तो स्पिरिचुअली है इफ यू डोंट बिलीव अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से उससे वायुमंडल को साफ रख देता है वो गंध को दूर कर देता है इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है हवन के लिए संविदा बना देता है जय बोलिए पीपल भगवान की जय सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और Basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful, and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulsi kush grass is wonderful. That's why our saint and Rishi Munis, they add that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the people and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that if you see that in the kalas there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, That is also panchapallav, mango, and pipal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world, and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia, and some other country, Canada. Nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the that's tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है और पीपल के क्या है पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका उनकी उन्होंने भी ध्यान किया ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया कब प्राप्त किया वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण
और बैसाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि